अच्छा जी गाने वाला तासुम रातू आए टांग वाले तासुम रातू आए जी मौसम सरेंगे दे मौसम दर डिग दे खराब दे शीन दे आसमान दे और यजदा कबारान दे ताबरात तासु आए खजी चिकल रात दा तासु आए माता बा पता उलगी भी आदा मौसम नु सिर्फ 335 435 पंद्र बांदे सम डेर मैसेज ना कम डेर काल न चिकम देर रहो लेगे खा इतना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान के बस सांसु मैसेजेस और सांसु कॉल्स आंसर शामिल हो मैं कुछ इकले था सुराहुल के चीत सुपुर में राले के लिए नहीं नुजान सर बेस शामिल कम जी और काल चिकम दी काल आगा बजान सर अलग ही शेवी लग साथुन पस अखला मनुन माता रख पलिख पलिख वखे पेवरेट पेवरेट शीरुन राहुल के उर्दू पुख्तू इसराइकी पंजाबी चीस सासु वखवी

अच्छा जी नो बिल्कुल मास्टर बने इंदिजना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान के तास खपल फेवरेट फेवरेट आज कम ने शीरू नाले गेले से नन बस्ता सुरपार व शीरो शहरे प्रोग्राम मिजबगुर मचिनन तासुमा तसन शीरू नाले गए सुमर खेसर खेसर शीरू नाले गए आओ संग रंग नाले गए खेसर नाले गए बदरंग नाले गए खूब पता लगी शक्ले तासुस रासेण गए नो नन मिजग सास सुरपार और मौसम खेसर तासुआतु है चिठांग वाने के मौसम संग रे ठांग वाने वाला ठांग वाले वन राविक्ष यारा लिगरा पास ही लब खूब दजा नो तख्त हुई बस देखा तुम्हारा खूब न मजा न की कना कुर्बान आओ कना खा

ओके जी, मैं जानता हूँ आज है और कल नहीं है, मैं जानता हूँ आज है और कल नहीं है, सो ये मोहब्बत मेरी उदासी का हल नहीं है। तू जिंदगी मेरी हौसले की दाद तो देना, तू जिंदगी मेरे हौसले की दाद तो देना, तुझे गुजारा है और मेरी माते पर बिल नहीं है।

तुम्हें जब कभी मिले फुर्सते मेरे दिल से बोझ उतार दो, मैं बहुत दिनों से उदास हूं, मुझे कोई शलम उतार दो, किसी और को मेरी ख्याल से ना गरीज है ना कोई वास्ता, मैं बिखर गया हूँ समेट लो, मैं बिगड़ गया हूँ सुनवार दो।

ये बहुत प्यारा सॉन्ग है. थैंक यू सो मच. ओके द चा मैसेज आ काल मा निवी रिसे या सासु कॉल या मैसेज कम दे ड्रॉप शिवी भी नो तासु नडी रिसात बखने वाला मा आज के टाइम रासर उस मुख्तसर दे बिल्कुल जो टाइम खत्म दे नो लाजिमी यूसल दे सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान इंतहाब अल्लाह मुराता खुशाल साथा अल्लाह मुराता आबाद साथा.

0: कोई असर नेगेटिव आता है तो उसका तरियाक आप क्या करेंगे, इसके बगैर आप इस्तेमाल नहीं। हाँ ये जरूर है कि कम अज कम इतना नुकसान ना हो
1: जी।
0: लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट थोड़े बहुत होते हैं। ये जरूर है कि आप उसको जब इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके मर्ज को मुस्तकिल तौर पर आपकी बॉडी से खत्म कर देगी।
1: बिल्कुल
0: ये तो है। और जहां तक रहा एलोपैथिक का, तो एलोपैथिक में जाहिर है बेस उसकी जो है, या इनकी कह लें एक सादी जबान में या झटका जबान में कि इनकी माँ हिकमत ही है, यूनानी मेडिसन ही है, हर्बल में जड़ी बूटियां ही हैं, उन्हीं पे रिसर्च करके उन पे जिद्दत दे के उसी से एलोपैथिक निकली, उसी से होम्योपैथिक आई, उसी से आयुर्वेदिक आए, उसी से यूनानी भी आई। तो चीज ये है कि हाँ ये जरूर उन लोगों ने मेहनतें की, रिसर्च की,
1: बिल्कुल,
0: और उसको जदीद शेप में ढाल दिया। तो अब
1: वो सब कुछ मैसेजेस भी हमारे पास आ रहे हैं
0: जी, जरूर
1: अगर आपकी इजाजत
0: नहीं,
1: तो प्रोग्राम में शामिल कर सकते।
0: साथ बातें तो चलती रहती हैं
1: जी। डेर असमल खान से मिसिस काशिफ हैं हमारे साथ, पूछती हैं कि मेरे आधे सर में दर्द रहता है
0: जी,
1: जिसकी वजह से मैं काफी परेशान होती हूँ, लेकिन जब रात होती है तो उसमें कुछ न कुछ फर्क उसमें महसूस होता है, लेकिन दिन को काफी ज्यादा होता है।
0: देखें ये माइग्रेन का होता है या दर्द शकी का या आधे सिर का दर्द, ये सूरज तलू होने के साथ होता है।
1: अच्छा।
0: और इसके साथ साथ ये बढ़ता भी है, और जो जो सूरज गरूब होने की तरफ जाएगा
1: जी,
0: इसके इसमें कमी भी आती जाएगी।
1: अच्छा।
0: ठीक है। अब उसमें ऐसा है कि इसका प्रॉपर इलाज भी है
1: जी,
0: तो इसका मुस्तकिल इलाज है जो इस आधे सर के दर्द को खत्म भी कर देता है। वैसे लोग कई टोटके नुस्खे भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके लिए दवाइयां जो हैं वो देसी दवाई में बिल्कुल मौजूद है कि जो आपको इंशाल्लाह विद इन वन या टू डेज में, एक से दो दिन में उसका फर्क आ जाता है,
1: माशाल्लाह दो
0: दर्द नहीं होगा और वो रफ्तार रफ्तार रिमूव हो जाएगा।
1: अच्छा।
0: सिर्फ वो दवाइयां जो बनेंगी वो दवाई ऐसी है कि आप वो जड़ी बूटियां ही हैं, कुटी होती हैं, उसको यह है कि आपने सूरज तलू होने से पहले आपने उसको लेना होता है पानी के साथ, यानी फजर के टाइम आप उठें उस टाइम आप ले लें, और उसके बाद जब सूरज तलू होता है तो इंशाल्लाह आपको दर्द नहीं होगा।
1: बिल्कुल। हकीम साहब हुरिया बरकी हैं हमारे साथ, वो उनका मैसेज भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हुरिया बरकी कहती हैं कि हम जब स्कूल जाती हैं तो अक्सर हमारे मुंह से जो है स्मेल आती है, हालांकि हम ब्रश करके भी जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे मुंह से हल्की सी जो स्मेल है वो महसूस होती है। कोई ऐसा हकीम साहब हमें टोटका बता दें कि हमारे मुंह से जो है खुशबू आए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे?
0: ये मैदे की तेजाबियत की वजह से भी हो जाता है, मैदा पूरा प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होता। और दूसरा ये है कि अगर आप खुशबू करना चाहते हैं तो आप मुंह में छोटी इलायची डाल सकते हैं, इलायची के दाने डाल लें, उनको आप थोड़ा थोड़ा चूसते रहें तो आपकी स्मेल नहीं आएगी, बल्कि मुंह से एक इलायची की महक आएगी। लेकिन इसका जो प्रॉपर हल है
1: जी
0: मुस्तकिल, वो ये है कि आप अपने मैदे का इलाज करें।
1: दांत साफ करने से वो
0: नहीं,
1: दांत तो साफ हो जाते हैं,
0: दांत तो साफ हो जाएंगे,
1: लेकिन जो मैदे की वो
0: जो अंदर से आपकी आएगी ना, वजह ये है कि जब हम कोई चीज खाते हैं
1: जी जी,
0: कल भी इसी पे बात हुई थी कि हम ऊपर से पानी, चाय, कोल्ड ड्रिंक बहुत कुछ डाल देते हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो जब वो खुराक है वो यकदम नीचे जाके बैठती है मैदे की आंत में, आंत के जरिए जाती है मैदे में बैठ जाती है, अब वो वहां जाके एक सड़न सी हजम होती नहीं है, वो फिर वो पड़ी पड़ी वहां पर उसमें से सरांड आनी शुरू हो जाती है। जब वो उसकी उठते हैं भपके या सरांड के तो वो स्मेल महसूस होती है कि इसके मुंह से आ रही है। अब उसमें आप बेशक कुछ लोग तो वो माउथ वॉश इस्तेमाल करते हैं, गरारे करते हैं, कुछ पेस्टें इस्तेमाल करते हैं, यानी बड़ा कुछ होता है। लेकिन जब तक आप अपने मैदे की इस्लाह नहीं करेंगे, आप अपने मैदे को ठीक नहीं करेंगे, ये चीज जा नहीं सकती।
1: वक्ती तौर पर तो चलो उन चीजों से फर्क आएगा, लेकिन ये है कि वो असल जो मैदे का मसला है
0: वो अपनी जगह है,
1: वो अपनी जगह।
0: अब उसके लिए इसीलिए है कि वक्ती तौर पर तो आप इलायची के छोटे इलायची ली, उसके दाने निकाले और मुंह में डाल के चूसते रहे, तो वो काफी टाइम आपका गुजर सकता है,
1: बिल्कुल,
0: और एक अच्छा एहसास आता है उसमें से जो हवा खारिज हो रही है मुंह से बोलते टाइम, तो वो किसी को बुरी महसूस नहीं होगी,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये है आरसी इलाज। इसका मुस्तकिल इलाज यही है कि आप अपने मैदी की सलाह करें, तो ये हमेशा के लिए रिमूव हो जाता है मसला।
1: हकीम साहब, अक्सर जो बीमारियां हैं कहा जाता है कि ये मैदे की वजह से जो है वजूद में आती है, जब इंसान का मैदा प्रॉपर काम नहीं करता। मैदे की इस्लाह के हवाले से भी जरा हमारे सुनने वालों की रहनुमाई फरमाएं कि हम अपने मैदे को यानी कि तंदुरुस्त जिसे हम कह सकते हैं कि कैसे रख सकते हैं
0: कि थोड़ी एहतियात से
1: जी
0: और एक मुतवाजन गिजा से।
1: अच्छा,
0: देखें अल्लाह ताला ने टाइम रखे हैं सुबह दोपहर शाम।
1: बिल्कुल,
0: सुबह का नाश्ता है
1: जी
0: तकरीबन राउंड अबाउट को चार चार घंटे का फर्क आ जाता है
1: जी,
0: के फिर दोपहर का खाना, फिर उसके बाद रात का खाना। अब यहाँ हमने अपनी रूटीन खुद खराब की हुई है, हम दोपहर का सुबह का नाश्ता जो है वो दोपहर पे ले गए हैं, दोपहर का शाम में ले गए हैं, रात का खाना जो है वो आधी रात को ले गए हैं। तो चीज ये है कि आप मैदा भी जो है उसका भी एक सिस्टम है, एक कुदरत का एक निजाम है और वो उसके तहत चल रहा है। हम अपनी मर्जी से अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकते कि हम कहें यार हम अपने खुद अपनी मर्जी से चलाएंगे ना अपने जिस्म को, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है।
1: नहीं हकीम साहब, यहाँ पे मुझे एक पश्तो की मिसाल याद आ गई है, अक्सर चाहने वालों से हम सुनते रहते हैं, वो कहते हैं कि बिजली तारों के कुदरत चारों से गोते बनवाए,
0: सही,
1: यानी कि बिजली के तारों में और कुदरत की जो काम है उसमें जो है आपने छेड़खानी नहीं करनी, वरना फिर नुकसान
0: होगा।
1: तो ये भी एक कुदरत का एक निजाम है,
0: कुदरत ने एक मशीन फिट करके हमें दे दी है। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारी चार्जिंग है
1: जी
0: वो लाइफ टाइम है।
1: बिल्कुल,
0: यानी हमें अपने आप को उस तरह चार्ज नहीं करना पड़ता जिस तरह मोबाइल को या किसी और चीज को करना पड़ता है।
1: कॉल
0: ले लें, कॉल ले लें।
1: अस्सलाम वालेकुम जी।
2: हेलो
1: जी, प्रोग्राम सेहत के बाद मशकूर अहमद के साथ में आपको खुशामदीद कहते हैं, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी?
2: हेलो
1: जी, जी आवाज आ रही है, कौन साहब कहाँ से हैं?
2: मैं वही
1: बस
2: की हूँ, मैं बस का बात करता हूँ
1: जी। जी पश्तो से खबर आओ को जी, चम मसला दे देता सु सर जी। जी जी जी जी अच्छा अच्छा ईद भर की तासो प्रोग्राम मारो इनशाला तासो मसला मुझो जिदा कना हकीम सैद मशकूर साहब तक पेश करूँ इनशाला तासो तबर जी डेरा मनाना जी डेरा मनाना। जो हकीम साहब वहीद बरकी हैं कहते हैं कि ये जो एसोफागस मेरे ख्याल में कहा जाता है जो नली जा रही
0: जी
1: है
0: जी,
1: मैदे की तरफ
0: जी जी जलन करती
1: कहती
0: है,
1: इसमें मुझे काफी जलन होती है, इस बारे में
0: देखें। इसके लिए ये कहे, एक तो तेज मिर्चे मसाले
1: जी,
0: खासकर मार्केट की चीजें, बाजार की चीजें
1: जी जी,
0: होटलिंग ये या ऐसी चीजें जो कि चिकनाई वाली भी हों, थोड़ी मिर्चे मसाले वाली भी हों, ये चीजें ना इस्तेमाल करे तो अच्छा है। जब तक ये छोड़ेंगे नहीं ये जलन जाएगी नहीं।
1: अच्छा।
0: दूसरी बात यह है कि आप कोशिश करें कि ये जो बॉयलर है शेवर मुर्गी है इससे थोड़ा सा परहेज कर लें, सब्जियों का चंद दिन इस्तेमाल करें और दालें खा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी फ्रूट वगैरह इस्तेमाल ना करें चंद दिन,
1: जब तक ये जलन है।
0: जब तक ये जलन है जरा मैदे की तजाबियत जब हटती है खत्म होती है फिर फ्रूट वगैरह इस्तेमाल करें। और दूसरा यह है कि आप कावा पी सकते हैं
1: जी,
0: ठीक है, उसमें आप अदरक डाल लें, थोड़ा सा नींबू डाल लें
1: जी,
0: तो या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि तकरीबन 50 ग्राम आप सौंफ ले लें, 50 ग्राम आप जीरा ले लें सफेद
1: जी,
0: और 50 ग्राम आप देसी अजवाइन ले लें।
1: देसी अजवाइन,
0: तो इसको आप तीनों को हम वजह ले लें, बेशक आप 20-20 ग्राम ले लें
1: जी,
0: इनको आप तवे पे पहले भूने, भूनने के बाद आप इसको पाउडर बना लें और आधी आधी चमची आप तीन टाइम पानी के साथ ले लिया करें सुबह दोपहर शाम।
1: अच्छा जी,
0: तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये जलन खत्म होती जाएगी और तजाबियत जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन इनको साथ परहेज अपना रखना पड़ेगा कुछ देर ताकि ये जलन मुस्तकिल तौर पर खत्म हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, वहीद बरकी साहब थे, हमें बार बार कॉल कर रहे थे। उम्मीद है कि हकीम साहब ने उनको अच्छी तरह नुस्खा भी बता दिया और एहतियाती तदाबीर भी बता दी, इससे जो है उम्मीद है कि आप मुतमईन हो गए होंगे। हकीम साहब जो हैं बहुत ही नाजुक मिजाज और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। देखें कि एक यानी कि पेशेंट के मसले को कितना टाइम उन्होंने दिया और सारी बातें बताई। वरना आजकल अगर किसी भी डॉक्टर या हकीम के पास जाए और आपने बहुत बाहरी जो है वो फीस भी अदा की होती है लेकिन इतना ज्यादा वक्त कोई नहीं देता, तो अल्लाह ताला जो है हकीम सैयद मशकूर अहमद साहब की जिंदगी में बरकत डालें जिन्होंने जो है सेहत के बारे में ये चराग रोशन किया हुआ है।

0: रोजाना 4 से 5 बराह रास्त स्टे विद अस।
1: ये दौर केसन है, ये जमाना केसन का है, ये गूंज ये आवाज जो हर सू है, हर लब पे है, हर जुबान पे है, हर घर में है। ये फकत आवाज नहीं है, ये एतमाद है, ये रिश्ता है, रिश्ता जो आपसे बन चुका है, रिश्ता जो एतमाद का है, यकीन का है, भरोसे का है। किसन नेचर्स पर एतमाद का शुक्रिया।

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and very warm welcome. A very warm welcome to all the sweet listeners of our radio program 97.4 Pahadpur Global FM 91 Dear Asmal Khan and Radio Aman 88.4 जी जनाब, तीन रेडियो स्टेशन और एक आवाज, और ये आवाज किसकी है जनाब? ये आवाज है कैसे नेचुरल पाकिस्तान की, और ये आवाज है खलील ताबे शमान की। जी जनाब, आज थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से और तीनों स्टेशन को कनेक्ट करते करते जनाब थोड़ा सा हम लेट हो गए, तो जिसके लिए माजरत। और ब्रांड न्यू लाइव शो के साथ जनाब आपकी खिदमत में हाजिर है। मंगल के दिन है, 13 अक्टूबर 2026 है जनाब, 30 रबीउल सानी है।

जनाब, कैसे आप सभी लोग? जनाब उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल जनाब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक एकदम मजे में हंसते हुए मुस्कुराते हुए खिलखिलाते हुए चहचहाते हुए जनाब अपने एक और खूबसूरत दिन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से जनाब स्पेंड कर रहे होंगे, जनाब स्पेंड करने वाले हैं। और दिन का इख्तिताम होता है हमारा टाइम 4 से 5 बजे का वक्त होता है केसन नेचुरल पाकिस्तान का। और जनाब मौसम की क्या सूरत हाल है? जी जनाब मौसम तो बिल्कुल बिल्कुल बदलता जा रहा है और बदलेगा क्यों नहीं कि जनाब जब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ और बदलते हुए मौसम की तरफ। जी जनाब बदलता हुआ मौसम, बदलते हुए दिन क्या बताते हैं कि जिंदगी आगे बढ़ रही है। और आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है? जीना होता है, जिंदगी होती है जनाब। और जिंदगी सिर्फ अगर आप अपने लिए जीते हैं तो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि अपने लिए तो सिर्फ जानवर जीते हैं, अगर आपने जीना है तो उस जिंदगी के हिस्से में बहुत सारा हिस्सा उन लोगों का होना चाहिए जो आपके आसपास रहते हैं। कहते हैं कि उस कुएं का पानी जो है कभी नहीं सूखता, उस कुएं का पानी कभी भी नहीं सूखता है कि जिससे लोग पानी पीते रहते हैं। जी जनाब, जिस कुएं से लोग पानी पीना छोड़ दें, आप यकीन कीजिए कि वो कुआं एक न एक दिन जो है वो खुश्क हो जाता है, सूख जाता है। तो जनाब जिंदगी बांटने का नाम है। और जिंदगी को अगर आप जिएंगे दूसरों के साथ अपने आसानियों को बांटकर, लोगों का ख्याल करके, तो यकीन कीजिए कि आपकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी गुजरने वाली है।

चीज दिया। तो ये वाली क्रीम हमारी दो सौ फटने से बचाना चाहते हैं। तो केसन का लिप ऑयल है जनाब, ये इतनी प्यारी चीज है कि लोग जेब के अंदर इसको रखते हैं। 100 रुपए इसकी कीमत है जनाब, और आपके होंठों को नर्म मुलायम रखता है, पिंक भी रखता है और खुश्की से भी बचाता है। ठीक है जनाब, ये हो गया। और इसके अलावा लोशन भी हमारा है। अब आप सोचेंगे कि भाई कोल्ड क्रीम है, लोशन की क्या जरूरत है, या अगर लोशन था तो कोल्ड क्रीम की क्या जरूरत है। मैं आपको बताऊंगा।

को लोशन से जी नहीं भरता है, वो कहते हैं कि भाई सही तरीके से मुझे ना मेरी खुश्की खत्म नहीं हुई है, चेहरे की, हाथों की, गर्दन की खुश्की खत्म नहीं हुई। तो ये अब हमने आप लोगों के लिए दो कैटेगरीज बनाई हैं, एक लोशन है, और लोशन भी 200 रुपए का है, 100 ml के अंदर है, और जो कोल्ड क्रीम है वो आई थिंक 60 ml में है, ठीक है जना, मिकदार में ये लोशन से कम है, लेकिन प्राइस इसकी 200 है। तो सर्दियों के लिए भाई आपको बता रहे हैं कि केसन नेचुरल पाकिस्तान का लोशन है, और लोशन में आपको बताऊं ये भी सबसे सस्ता है मार्केट में। जिस लेवल का हमारा लोशन है ना, ये आपको 300 से कम किसी और कंपनी का नहीं मिलेगा, ठीक है जनाब, नहीं मिलेगा। और ये आपको केसन नेचुरल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कितने का मिल रहा होता है जी जनाब, ओनली इन 200। तो बहुत ही रीजनेबल रेट हमने रखे हुए हैं जनाब, और जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं आप यकीन कीजिए आप लोगों का हम सोचते हैं पहले कि जो रेट हम रख रहे हैं वो रेट जो है क्या लोग अफोर्ड कर सकेंगे, क्या दूसरी कंपनियां इस रेट में दे रही हैं। तो सबसे पहले आप हमारी नजर में होते हैं और आपको देखते हुए हम अपने जो रेट्स होते हैं वो तय कर रहे होते हैं। तो ये प्रोडक्ट हमारे सर्दियों के हैं, ठीक है जनाब, आपके पास जरूर होने चाहिए अगर आप केसन से मोहब्बत करते हैं। और आज आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है, और गुड न्यूज ये है टांक वालों के लिए, स्पेशली ये जो गुड न्यूज है जनाब ये टांक वालों के लिए है। और क्या टांक वालों के लिए, टांक वालों के लिए हमने बहुत सारे सेल पॉइंट ओपन किए हुए हैं, और एक हम जरबत खान का तो आप कहते रहते हैं मंसूर जनरल स्टोर सदाम प्लाजा के अंदर, लेकिन एक और पॉइंट जो हमारा पहले से शुरू है लेकिन अभी वहां पर डिमांड हमारी बहुत ज्यादा है, और वो है बिलाल मार्केट के अंदर नसीम जनरल स्टोर। तो वहां पर जितने लोग आते हैं, ये मैंने अपनी तरफ से ऑफर अनाउंस की है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लोग अब खरीदारी के लिए जा रहे हैं, तो अभी और ज्यादा लोगों ने वहां पर जाना है, क्योंकि खूबसूरत किस्म की ऑफर हमने आपको टांक के अंदर बिलाल मार्केट जो है आई थिंक पेजू रोड के ऊपर है, ठीक है जनाब, नसीम जनरल स्टोर एंड कॉस्मेटिक, वहां पर एक ऑफर लगा रहे हैं हम आप लोगों के लिए जो हमने पहले मंसूर जनरल स्टोर के ऊपर भी लगाई थी, और वो ऑफर थी 1000 की खरीदारी के ऊपर जो है एक सोप आपको फ्री मिल रहा था, जाफरानी साबुन लेते थे या आप 250 रुपए का जाफरानी साबुन 250 रुपए का, ठीक है जनाब, और परफ्यूम भी 250 रुपए का, तो एक आपको फ्री मिलता था, ठीक है जनाब। अभी यहाँ पर हमने कौन सी ऑफर इंट्रोड्यूस करी, यहाँ पर हमने सर्दियों वाली ऑफर इंट्रोड्यूस करवाई है, ठीक है जनाब। सर्दियों वाली कौन सी ऑफर है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये चीजें सर्दी की हैं, उसी तरीके से हमारा मिल्की साबुन जो है ना, मिल्की साबुन बेसिकली खुश्की आपको होती कब है, उस वक्त होती है जब आप अपने चेहरे को धोते हैं किसी साबुन से, ठीक है जनाब। आपको बाजार के अंदर जो साबुन मिलते हैं ना वो डोलोमाइट से बने हुए, केमिकल से बने हुए साबुन होते हैं, ठीक है जनाब, उनके अंदर कोई कोकोनट ऑयल नहीं होता, कोई ग्लिसरीन नहीं होती है। केसर नेचुरल पाकिस्तान के साथ जो फ्लेवर है ये नारियल के तेल से बने हुए हैं, कोकोनट ऑयल और ग्लिसरीन से बने हुए हैं। यही वजह है कि जब आप इनसे चेहरा धोएंगे ना, सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है सर्दी के अंदर हमारा मिल्की साबुन, ठीक है जनाब, हर कोई यही साबुन खरीदता है, हर कोई यही खरीदता है। मैं आपको शायद कल बात ये बताई है कि नहीं बताई है, कल एक हमारे पास भाई आए और वो कह रहे थे कि डेरा इस्माइल खान के एक बहुत बड़े स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास जो है मेरी मिसेस का इलाज चल रहा है, ठीक है। तो मैं आपका ये मिल्की साबुन लेके गया, तो मेरी मिसेज ने जब इस्तेमाल किया वो कहती है कि इस साबुन के इस्तेमाल के बाद मेरे चेहरे के अंदर इतनी ज्यादा बेहतरी आई है कि मैं ये समझती हूँ कि उन मेडिसिन का इतना काम नहीं है जितना इसने काम किया। तो मैं वो कल फिर लेने के लिए आया हुआ था, यानी कि एक साबुन एक फीमेल को इतना मुतासर कर रहा है, और वो साबुन हमारा मिल्की साबुन है, गोट मिल्क सोप है। बहुत सारे दिनों से हमने इसका जिक्र नहीं किया है, आज भाई जिक्र करेंगे मिल्की साबुन का, क्योंकि जनाब ये सर्दियों की प्रोडक्ट है, ठीक है जनाब। और सर्दी के अंदर भाई जिसका भी चेहरा खुश्क होता है ना, इस साबुन को इस्तेमाल करे, मैं गारंटी देता हूँ चेहरा खुश्क नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है, बहुत वो भी जब बहुत सर्दी बढ़ जाए, अभी नहीं, ठीक है जनाब, अभी तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा स्मूथ और नॉर्मल हो जाएगी। तो ये साबुन आपको फ्री मिलेगा वहां पर जब आप 1000 की चीजें खरीदेंगे नसीम जनरल स्टोर, ठीक है जनाब, वहां पर आपको ये मिलेंगी नसीम के ऊपर

0: ही तंज व मजा और खुशहाली और इस्तेहकाम का हसीन संगम। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 डॉक।
1: दिल से जो निकलती है, दिलों तक जो जाती है, मालूमात को जगाती है, दुनिया का हाल बताती है। ये वो आवाज है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है। ये आवाज है जो अमन की है। ये वो पैगाम है जो अमन है। रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम।

0: आप तवे पे खुशक कर लेते हैं, फुल कर लेते हैं, उसका जो केमिकल जो तेल है वो पानी है वो खुशक हो गया, उसी को आप पाउडर करके आप खा सकते हैं।
1: अच्छा, फिर वो नुकसानदेह नहीं है। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: हेलो
1: जी, जी आपकी आवाज आ रही है। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: हम कहाँ से बात करते हैं
1: जी? जी आप नाम बताएं अपना।
2: मेरा नाम मोहित है, मोहित बरकी।
1: मोहित बरकी साहब, आपके साथ क्या मसला है? हकीम साहब बैठे हुए हैं, अगर आपने सेहत के
2: हवाले से आवाज सही नहीं आता
0: बस।
1: अच्छा चलो ठीक है,
0: बस मिलाते हैं।
1: अच्छा हकीम साहब, बात हो रही थी तीब के हवाले से।
0: जी बिल्कुल।
1: तो आपने कहा कि जड़ी बूटियों का भी यानी कि साइड इफेक्ट है।
0: बिल्कुल,
1: जब तक हम उनको जानते नहीं है कि इनका इस्तेमाल किस
0: इस्तेमाल कैसे करना है, कितनी मिकदार में करना है और इसका तरिया क्या होगा। अगर एक बिलफर्ज है, एक बूटी का कोई असर नेगेटिव आता है तो उसका तरियाक आप क्या करेंगे, इसके बगैर आप इस्तेमाल। हाँ ये जरूर है कि कम से कम इतना नुकसान ना हो
1: जी।
0: लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स थोड़े बहुत होते हैं। ये जरूर है कि आप उसको जब इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके मर्ज को मुस्तकिल तौर पर आपकी बॉडी से खत्म कर देगी।
1: बिल्कुल,
0: ये तो है। और जहां तक रहा एलोपैथिक का, तो एलोपैथिक में जाहिर है बेस उसकी जो है, या इनकी कह लें एक सादी जबान में या झटका जबान में कि इनकी माँ हिकमत ही है, यूनानी मेडिसन ही है, हर्बल में जड़ी बूटियां ही हैं, उन्हीं पे रिसर्च करके उन पे जिद्दत दे के उसी से एलोपैथिक निकली, उसी से होम्योपैथिक आई, उसी से आयुर्वेदिक आए, उसी से यूनानी भी आई। तो चीज ये है कि हाँ ये जरूर उन लोगों ने मेहनत की, रिसर्च की
1: बिल्कुल,
0: और उसको जदीद शेप में ढाल दिया। तो अब
1: कुछ मैसेजेस भी हमारे पास आ रहे हैं
0: जी, जरूर
1: अगर आपकी इजाजत।
0: नहीं नहीं,
1: प्रोग्राम में शामिल
0: कर सकते हैं, साथ बातें तो चलती रहती हैं
1: जी। डेर अस्मिल खान से मिसिज काशिफ हैं हमारे साथ, पूछती हैं कि मेरे आधे सर में दर्द रहता है
0: जी,
1: जिसकी वजह से मैं काफी परेशान होती हूँ, लेकिन जब रात होती है तो उसमें कुछ न कुछ फर्क उसमें महसूस होता है, लेकिन दिन को काफी ज्यादा होता है।
0: देखें ये माइग्रेन का होता है या दर्द शकी का या आधे सिर का दर्द, ये सूरज तलु होने के साथ होता है।
1: अच्छा,
0: और इसके साथ साथ ये बढ़ता भी है, और जो जो सूरज गरूब होने की तरफ जाएगा
1: जी,
0: इसके इसमें कमी भी आती जाएगी।
1: अच्छा,
0: ठीक है। अब उसमें ऐसा है कि इसका प्रॉपर इलाज भी है
1: जी,
0: तो इसका मुस्तकिल इलाज है जो इस आधे सर के दर्द को खत्म भी कर देता है। वैसे लोग कई टोटके नुस्खे भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके लिए दवाइयां जो हैं वो देसी दवाई में बिल्कुल मौजूद है कि जो आपको इंशाल्लाह विद इन वन या टू डेज में, एक से दो दिन में उसका फर्क आ जाता है,
1: माशाल्लाह दो दिन
0: दर्द नहीं होगा और वो रफ्तार रफ्तार रिमूव हो जाएगा।
1: अच्छा,
0: सिर्फ वो दवाइयां जो बनेंगी वो दवाई ऐसी है कि आप वो जड़ी बूटियां ही हैं, कुटी होती हैं, उसको यह है कि आपने सूरज तलु होने से पहले आपने उसको लेना होता है पानी के साथ, यानी फजर के टाइम आप उठें उस टाइम आप ले लें, और उसके बाद जब सूरज तलु होता है तो इंशाल्लाह आपको दर्द नहीं होगा।
1: बिल्कुल। हकीम साहब, हुरिया बरकी हैं हमारे साथ, वो उनका मैसेज भी प्रोग्राम में शामिल करती हैं। हुरिया बरकी कहती हैं कि हम जब स्कूल जाती हैं तो अक्सर हमारे मुंह से जो है स्मेल आती है, हालांकि हम ब्रश करके भी जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे मुंह से हल्की सी जो स्मेल है वो महसूस होती है। कोई ऐसा हकीम साहब हमें टोटका बता दें कि हमारे मुंह से जो है खुशबू आए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे?
0: ये मैदे की तेजाबियत की वजह से भी हो जाता है, मैदा पूरा प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होता। और दूसरा ये है कि अगर आप खुशबू करना चाहते हैं तो आप मुंह में छोटी इलायची डाल सकते हैं, इलायची के दाने डाल लें, उनको आप थोड़ा थोड़ा चूसते रहें तो आपकी स्मेल नहीं आएगी, बल्कि मुंह से एक इलायची की महक आएगी। लेकिन इसका जो प्रॉपर हल है
1: जी,
0: मुस्तकिल, वो ये है कि आप अपने मैदे का इलाज करें।
1: दांत साफ करने से वो चलो,
0: नहीं
1: दांत तो साफ हो जाते हैं,
0: तो साफ हो जाएंगे,
1: लेकिन जो मैदे की वो
0: जो अंदर से आपकी आएगी ना, वजह ये है कि जब हम कोई चीज खाते हैं
1: जी जी,
0: कल भी इसी पे बात हुई थी कि हम ऊपर से पानी, चाय, कोल्ड ड्रिंक बहुत कुछ डाल देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो जब वो खुराक है वो यकदम नीचे जाके बैठती है मैदे की आंत में, आंत के जरिए जाती है, मैदे में बैठ जाती है। अब वो वहां जाकर एक सड़न सी हजम होती नहीं है वो, फिर वो पड़ी पड़ी वहां पर उसमें से सरांड आनी शुरू हो जाती है। जब वो उसकी उठते हैं भपके या सरांड के, तो वो स्मेल महसूस होती है कि इसके मुंह से आ रही है। अब उसमें आप बेशक कुछ लोग तो वो माउथ वॉश इस्तेमाल करते हैं, गरारे करते हैं, कुछ पेस्टें इस्तेमाल करते हैं, यानी बड़ा कुछ होता है। लेकिन जब तक आप अपने मैदे की इस्लाह नहीं करेंगे, आप अपने मैदे को ठीक नहीं करेंगे, ये चीज जा नहीं सकती।
1: वक्ती तौर पर तो चलो उन चीजों से फर्क आएगा, लेकिन ये है कि वो असल जो मैदे का मसला है
0: वो अपनी जगह है,
1: वो अपनी जगह।
0: अब उसके लिए इसीलिए है कि वक्ती तौर पर तो आप इलायची के छोटे इलायची ली, उसके दाने निकाले और मुंह में डाल के चूसते रहे, तो वो काफी टाइम आपका गुजर सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और एक अच्छा एहसास आता है उसमें से, जो हवा खारिज हो रही है मुंह से बोलते टाइम, तो वो किसी को बुरी महसूस नहीं होगी।
1: बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये है आरसी इलाज। इसका मुस्तकिल इलाज यही है कि आप अपने मैदे की इस्लाह करें, तो ये हमेशा के लिए रिमूव हो जाता है मसला।
1: हकीम साहब, अक्सर जो बीमारियां हैं, कहा जाता है कि ये मैदे की वजह से जो है वजूद में आती है, जब इंसान का मैदा प्रॉपर काम नहीं करता। मैदे की इस्लाह के हवाले से भी जरा हमारे सुनने वालों की रहनुमाई फरमाएं कि हम अपने मैदे को यानी कि तंदुरुस्त, जिसे हम कह सकते हैं, कि कैसे रख सकते हैं
0: कि थोड़ी एहतियात से
1: जी
0: और एक मुतवाजन गिजा से।
1: अच्छा,
0: देखें अल्लाह ताला ने टाइम रखे हैं सुबह दोपहर शाम।
1: बिल्कुल।
0: सुबह का नाश्ता है
1: जी,
0: तकरीबन राउंड अबाउट कुछ चार चार घंटे का फर्क आ जाता है
1: जी,
0: के फिर दोपहर का खाना, फिर उसके बाद रात का खाना। अब यहाँ हमने अपनी रूटीन खुद खराब की हुई है, हम दोपहर का सुबह का नाश्ता जो है वो दोपहर पे ले गए हैं, दोपहर का शाम में ले गए हैं, रात का खाना जो है वो आधी रात को ले गए हैं। तो चीज ये है कि आप मैदा भी जो है उसका भी एक सिस्टम है, एक कुदरत का एक निजाम है, और वो उसके तहत चल रहा है। हम अपनी मर्जी से अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकते कि हम कहें यार हम अपने खुद अपनी मर्जी से चलाएंगे ना अपने जिस्म को, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है।
1: नहीं, हकीम साहब यहाँ पे मुझे एक पश्तो की मिसाल याद आ गई है, अक्सर चाहने वालों से हम सुनते रहते हैं, वो कहते हैं कि बिजली तारों के आ कुदरत चारों से गोते बनवाए।
0: सही,
1: यानी कि बिजली के तारों में और कुदरत की जो काम है उसमें जो है आपने छेड़खानी नहीं करनी, वरना फिर नुकसान
0: होगा।
1: तो ये भी एक कुदरत का एक निजाम है,
0: कुदरत ने एक मशीन फिट करके हमें दे दी है। हाँ, ये जरूर है कि जो हमारी चार्जिंग है
1: जी
0: वो लाइफ टाइम है।
1: बिल्कुल,
0: यानी हमें अपने आप को उस तरह चार्ज नहीं करना पड़ता जिस तरह मोबाइल को या किसी और चीज को करना पड़ता है। आप ले लें कॉल।
1: अस्सलाम वालेकुम जी।
2: हेलो
1: जी, प्रोग्राम सेहत के बाद मशकूर अहमद के साथ में आपको खुशामदीद कहते हैं। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं जी? जी जी, आवाज आ रही है। कौन साहब कहाँ से हैं?
2: मैं वही पश्तो में बात करता हूँ।
1: जी जी,
2: ताज़ वही बर्फी है का ना?
1: जी जी, पश्तो से खबर आओ को जी, चम मसला दे जाता सुसरा जी।
2: वही बर्फी है का ना?
1: जी जी, जी जी, अच्छा अच्छा, ईद बरकी तासो प्रोग्राम आरो इंशाल्लाह तासो मसला मुझो जिदा कना हकीम सैयद मशकूर साहब तो पेश कहूँ इंशाल्लाह तासो तबरो सही देरा मनाना जी, देरा मनाना। जो हकीम साहब वहीद बरकी हैं कहते हैं कि ये जो एसोफागस मेरे ख्याल में कहा जाता है, जो नली जा रही है मैदे की तरफ,
0: जी जी, जलन करती
1: है, कहती है इसमें मुझे काफी जलन होती है, इस बारे में
0: देखें। इसके लिए ये कहे, एक तो तेज मिर्चे मसाले
1: जी,
0: खासकर मार्केट की चीजें, बाजार की चीजें
1: जी, जी,
0: होटलिंग ये, या ऐसी चीजें जो कि चिकनाई वाली भी हों, थोड़ी मिर्चे मसाले वाली भी हों, ये चीजें ना इस्तेमाल करे तो अच्छा है। जब तक ये छोड़ेंगे नहीं, ये जलन जाएगी नहीं। दूसरी बात यह है कि आप कोशिश करें कि ये जो बॉयलर है, शेवर मुर्गी है, इससे थोड़ा सा परहेज कर लें, सब्जियों का चंद दिन इस्तेमाल करें और दालें खा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी फ्रूट वगैरह इस्तेमाल ना करें चंद दिन,
1: जब तक ये जलन
0: जब तक ये जलन है। जरा मैदे की तजाबियत जब हटती है, खत्म होती है, फिर फ्रूट वगैरह इस्तेमाल करें। और दूसरा यह है कि आप कावा पी सकते हैं, ठीक है, उसमें आप अदरक डाल लें, थोड़ा सा नींबू डाल लें, तो दूध, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि तकरीबन 50 ग्राम

0: रहना पड़ेगा कुछ देर ताकि ये जलन मुस्तकिल तौर पर खत्म हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल। वहीद बरकी साहब थे, हमें बार बार कॉल कर रहे थे। उम्मीद है कि हकीम साहब ने उनको अच्छी तरह नुस्खा भी बता दिया और एहतियाती तदाबीर भी बता दी, इससे जो है उम्मीद है कि आप मुतमईन हो गए होंगे। हकीम साहब जो हैं बहुत ही नाजुक मिजाज और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। देखें कि एक यानी कि पेशेंट के मसले को कितना टाइम उन्होंने दिया और सारी बातें बताई। वरना आजकल अगर किसी भी डॉक्टर या हकीम के पास जाएं और आपने बहुत बाहरी जो है वो फीस भी अदा की होती है लेकिन इतना ज्यादा वक्त कोई नहीं देता, तो अल्लाह ताला जो है हकीम सैयद मशकूर अहमद साहब की जिंदगी में बरकत डालें जिन्होंने जो है सेहत के बारे में ये चराग रोशन किया हुआ है।

0: शक्कर आप थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मिठास के लिए
1: जी।
0: कोशिश करें कि आप जरा थोड़ा सा एहतियात ही रखें, मीठे से जरा दूर ही रहें, क्योंकि फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स होगी
1: जी।
0: और शुगर जो है ये ओवर पूरी बॉडी के लिए नुकसानदेह है। ये खाली ये नहीं है कि आपका लबलबा ही खराब हुआ है, या आपकी निगाह को, आपकी कुव्वत समात को, आपके हार्ट को, आपके असाब को, ये फुल बॉडी जो है वो उसको कमजोर करेगी। तो दूसरा ये है कि हाँ, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप दवा खाने का एक विजिट कर लीजिएगा। आपकी बॉडी, आपका मिजाज, आपका मर्ज, आपसे केस हिस्ट्री लेके शायद आपको कुछ ऐसे खुराक बताऊं कि जो आप अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकें, यानी लाइट मीठा हो, हल्का।
1: अगर तशरीफ ले
0: हाँ, वो ज्यादा बेहतर हो जाता है, ताकि आदमी खुल के उसको मुकम्मल तौर पे बता सकते हैं।
1: अब अगर हम यहाँ पे कोई ऐसी चीज बता देते हैं और हो सकता है कि वो किसी और के लिए वो ठीक ना हो, तो फिर जो है ये हकीम साहब अलीजे खान हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम आदिल सियाल, आपको और हकीम साहब को सलाम। और साथ में इनका कहना है कि मुझे कुछ अरसा पहले मलेरिया हुआ था, जबकि अब मलेरिया बुखार तो नहीं हो रहा, लेकिन मेरे सर में अक्सर दर्द रहता है, इसके बारे में रहनुमाई फरमाएं।
0: देखें, बुखार हो सकता है, मलेरिया बुखार बाज दफा देर तक जिस्म के अंदर रहता है, उसके जो जरासीम्स हैं वो काफी देर बाद जिस्म से खारिज होते हैं, और इसकी जो दवाई है वो भी काफी कह लें कि डोज में होती है कि इसके मलेरिया के जरासीम है उनको मारा जाए। तो हाँ, वक्ती तौर पे आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका दवाखाने पे आना होता है तो ठीक है, इसका मुस्तकिल इलाज भी है। तो और दूसरा यह है कि आप बाजार से या पंसारी से आप अस्तुखदूस आप ला के रख सकते हैं, और उसको आप पाउडर बना लें, आधा चमचा सुबह और आधा चमचा शाम आप एक कप चाय के साथ ले लिया करें, तो इंशाल्लाह ये आपकी जो दर्द है ये मुस्तकिल तौर पे ठीक होगी। या फिर करशी दवाखाने की जो आती हैं मजून अस्तुखदूस
1: जी,
0: वो मजून ले लें, अतराफिल अस्तुखदूस कहलाती है।
1: अच्छा।
0: वो लेके आप आधा चमचा सुबह और आधा चमचा शाम खाना शुरू कर दें, तो इंशाल्लाह आप काफी हद तक अपने मर्ज को
1: बेहतर
0: कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी डियर नाजरीन और सामईन, इस वक्त आप प्रोग्राम समाप्त फरमा रहे हैं सेहत की बात मशकूर अहमद के साथ। हमारे साथ हकीम सैयद मशकूर अहमद साहब इस्लामाबाद वाले मौजूद हैं, जो आपके मसाइल सुन भी रहे हैं, उसके हवाले से घरेलू टोटके भी बता रहे हैं, और साथ साथ एहतियाती तदाबीर भी आपको बता रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि इन बीमारियों का रीजन क्या है, वजूहात क्या है। हाँ बिल्कुल, अगर आप लोगों के साथ भी कोई मसला है और आप उसका इलाज कराना चाहते हैं, तो आप शवाल मार्केट में अलशिफा दवाखाने पर तशरीफ़ ला सकते हैं। हकीम साहब सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक मौजूद होते हैं, वहां पर आप आकर अपनी नब्ज दिखा सकते हैं, अपने मसाइल बयान कर सकते हैं, उससे जो है हकीम साहब आपकी रहनुमाई फरमाएंगे, आपका इलाज करेंगे, और बफजले खुदा अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों हजारों लोग हकीम साहब के इलाज से सेहतियाब हुए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी सेहत अता फरमाएंगे।

0: हमें जो है ये बताएं हकीम साहब कि खाना खाने के बारे में कि खाना कितना खाना चाहिए, जबकि भूख होती है तो हम पेट भर के खा लेते हैं, जरा इस बारे में बताएं।
1: इस बारे में तो यही है कि आप पेट भर के मत खाएं
0: जी।
1: आप वो कहते हैं ना कि सुबह का नाश्ता जो है वो शहनशाहों वाला करो।
0: वाह,
1: ठीक है। आप सुबह का नाश्ता पेट भर के कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। आप देख लें, क्योंकि मेरा ताल्लुक लाहौर से है, मेरी पैदाइश है, मेरी पढ़ाई वहाँ की है, मेरे घर हैं वहाँ अभी भी, तो उस वहाँ लोग पाए सिरी पाए,
0: बिल्कुल,
1: ये
0: बिल्कुल।
1: दूसरा जबान ओजड़ियाँ, यानी वो भारी चीजें खाते हैं वहाँ पर हम लोग। उसमें यह है कि वो नाश्ता इसीलिए था कि आपको सुबह भरपूर तवानाई चाहिए होती है, आपका मैदा रात का खाली पड़ा हुआ है, यानी आपने
0: कितने घंटे,
1: 8-10-12 घंटे कह लें आपने गुजार दिए। अब जब सुबह मैदा आपका डिमांड कर रहा है कि मुझे कोई ताकत वाली चीज दें, आप सुबह का नाश्ता रखें। और दूसरा यह है कि दोपहर को आप दोपहर का भी नाश्ता अच्छा, वो खाना अच्छा कर सकते हैं, लेकिन रात का खाना जो है वो बिल्कुल फकीरों वाला ही रखें, हल्की फुल्की गिजा रखें और पेट भर के ना खाएं।
0: बिल्कुल।
1: वैसे भी हदीस भी है,
0: सुन्नत भी है
1: कि आप मैदे के चारों जो खाने हैं वो पुर ना करें, एक हिस्सा खुला छोड़ दें
0: हवा के लिए
1: मैदे की आसानी के लिए, जाहिर है। तो आप जितना नरम खाएंगे, जितना भूख रख के खाएंगे, आपको कभी भी मैदे का मसला नहीं बनेगा।
0: और हकीम साहब, ये अक्सर मसला ये आता है कि हम चबाने में भी तो कंजूसी करते हैं ना।
1: ऐसा ही है, देखिए अल्लाह ताला ने हमें 32 दांत दिए,
0: माशाल्लाह, बिल्कुल,
1: ठीक है ना। 32 दांत देने का मकसद ही यही था कि आप चबा के खाएं। जानवर अगर चबा चबा के खा सकता है तो हम तो फिर इंसान है ना। हमें 32 दांत दिए गए हैं कि आप, बल्कि आप आज से पुराने वक्तों की, मैंने तकरीबन नेट पे 5000 जो साल पहले की आयुर्वेदिक की किताबें भी पढ़ी हैं, उसमें वो लोग कहते थे कि एक निवाले पे कम से कम आप 15-20 मिनट लगाएं,
0: ताकि वो
1: इतना चबाएं उसे कि वो बिल्कुल पानी हो जाए और वो आपके हलक से नीचे उतरे, ठीक है। और इसको फिर जो जदीद हुक्मा आए
0: जी,
1: उन्होंने हकीम सईद साहब जैसे या हकीम अजमल जैसे, इन्होंने भी अपनी ब्याजों में लिखा कि आप निवाले को आस्ता आस्ता तहम्मुल से उसे टाइम दें, चबाएं, चबा के फिर उसे निगलें। दरअसल हम मैदे के हमारे दांत नहीं है, हमें दांत ऊपर मिले हैं कि इसको चबा के फिर आपने मैदे को देना है। हम उसको दर दर करते हैं, बस मोटा झोटा जैसा है, चल भाई मैदे के हवाले। अब मैदे ने उसको मिक्स करना होता है, उसको एक चलाना होता है, उसमें अब जो मोटे हैं जर्रे या खुराक के पीस, तो वो बाद दफा मैदे में दर्द भी करते हैं और वो हजम भी नहीं होते।
0: बिल्कुल। हकीम साहब एक कॉल लेते हैं, देखिए कौन साहब हमारे साथ कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम सेहत की बात मशकूर अहमद के साथ में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। कौन साहब कहाँ से
2: जी? असमत अमान बात कर रहा हूँ, गरकोड़ खान।
0: असमत एवान गरकोड़ खान से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हकीम साहब से क्या पूछना चाहेंगे?
2: शुक्रिया आदिल साहब, आपका भी और हकीम साहब का भी जो कीमती वक्त देते हैं रोजाना प्रोग्राम,
1: शुक्रिया,
2: बहुत मुफीद मशवरे और मुफीद अदवियात बताते हैं। मेरा एक सवाल तो ये है, जो ये गांव के लोग खास तौर पर ये जो सांप हैं, बिच्छू हैं, ये वगैरह काट लेते हैं, तो इसके लिए कोई फौरी जो वो देसी अद्वियात होते हैं जो गांव में मिल जाते हैं
0: जी,
2: वो अगर हकीम साहब बता दें। और दूसरा ये कि 6 साल का बच्चा है, उसका जो पांव का अंगूठा है से हर वक्त चमड़ा उतरता है और खारिश भी करता है।
0: अच्छा।
2: इसका अगर कुछ बता दें तो बहुत
0: जी जी बड़ी मेहरबानी। असमत ऐवान साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जी, बहुत मेहरबानी,
2: शुक्रिया
0: जी। टाइम भी हमारे पास हकीम साहब 4 मिनट रह गए,
1: मैं बताएंगे
0: जी।
1: दूसरा यह है कि पहले तो है कि जो ये खशरात वगैरह, सांप, बिच्छू, ऐसे जहरीले, इनके लिए कुछ चीजें ऐसी हैं کہ جو آپ احتیاطاً استعمال کر سکتے ہیں, اس پہ میں کل ان کو بتاؤں گا تفصیل سے تھوڑا. تو دوسرا ہے کہ وہ بچے کا معاملہ, کہ اس کے انگوٹھے کی جو جلد ہے وہ اترتی ہے, تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اگر ادھر آنا ہوتا ہے تو دوا خانے پہ بھی مرہم تیار ہے اس مسئلے کے لیے, بچے کے لیے آپ لے جا سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ گندک آملہ سار لے لیں پنساری سے اور اس کو آپ پیس لیں اور تیل کے اندر اسے مکس کریں, سرسوں کے تیل میں کر لیں, تھوڑی سی لیں پہلے اس کو تھوڑا سا آپ ٹرائی کر لیں, آپ اس کو پیسیں اور پیس کے تھوڑا سے تیل میں اس کی پیسٹ بنائیں اور پیسٹ بنانے کے بعد وہ جو ہے وہ آپ اس کی جلد کے اوپر لگا سکتے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ اس کو سکون ملے اور اس کی جو جلد ہے وہ ذرا بہتر ہو. تو تھوڑی مقدار میں لے لیں, پھر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہاں اب اس کا فائدہ ہے تو پھر آپ اسے کنٹینیو رکھ سکتے ہیں, اور اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اس کے لیے مرہم دوا خانے پہ بھی تیار ہوتی ہیں, وہ آپ وہاں سے بھی منگوا سکتے ہیں.
0: بہت شکریہ حکیم صاحب,
1: بہت شکریہ.
0: ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ایک گھنٹہ ہمارے سننے والوں کو دیا,
1: بہت مہربانی,
0: اور ان کی مسائل کو اچھی طرح سنا اور ان کو جو ہے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائی. جی سمعین, آپ اس وقت جو ہے سماعت فرما رہے تھے صحت کی بات مشکور احمد کے ساتھ. اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہے, رنگڑوا ہے, بادی بواسیر, خونی بواسیر, بلڈ پریشر یا کوئی معدے کے جملہ امراض میں سے کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ ہے یا کوئی بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے, تو آپ جو ہے الشفا دوا خانہ جو کہ شوال مارکیٹ کے اندر موجود ہے, وہاں پر حکیم سید مشکور احمد صاحب 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک موجود ہوتے ہیں, جو کہ ایک دوستانہ صفت کے مالک ہیں. آپ آ کر ایسے دوستانہ ماحول میں ان کے ساتھ اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ حکیم صاحب آپ کی بات سنیں گے اور آپ کا علاج کریں گے. فی الحال کی گھڑی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ سانسوں نے وفا کی, تو کل سیم چینل پہ سیم وقت آپ سے ملاقات ہوگی. اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں. اللہ حافظ.

ओके जनाब अस्सलाम, कैसे हो? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। शूज वेरी नाइस है मेरे दहान, सबको सलाम, आपको भी सलाम। वालेकुम सलाम, सिडेरा मना नखास के। और बोलो इफ आर यू, दुनिया के सबसे छोटा मुल्क मेरा दिल है, जिसका आबादी सिर्फ एक शख्स है, और वो शख्स उसमें आबाद है। मेरा मनन से खुशहाल उसे है। और बोलो ऐसे है गुड महसूस जी की भी हाल है। और दे शांति रसला सलाम टू ऑलवेज स्माइल फ्राइडे रमन से। और वैसे वैसे मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि शो रिकॉर्ड है, पता नहीं इसी बरकी से वो ब्या मनने से खुशहाल शे के दरमन शेखा। और सलाम सुद मेरे मनना खोरे खुशहाल शे दे मैसेज करो मियो जहान मनना। अस्सलाम वालेकुम भाई, हो रही हो वजीरी और भाई शो बेस्ट है। सब सिस्टर को सलाम एंड स्पेशली सलाम फॉर यू, इट्स मी जोया मीसू। मेरे मनन से खुशहाल शे के दरमन शे। सलाम मनाल नयाब खान किरण फार्मूला तमीसूला सलाम।